एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तुति रत्नावली शर्मा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलेन केन्द्रीय समितेः सदस्यपदे नवजनाः नियुक्ताः वर्तन्ते। दलस्य ह्य उपवेशेन केन्द्रीय समितेः उपवेशेन सुनिल लम्सालः, सुदन गुरुङ, प्रतिभा रावलः, भूपदेव शाह, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवः, डाक्टर मनोहर प्रधान, बसुमाया तामाङ, सुरेन्द्र चौधरी, डाक्टर भक्तबहादुर राई छ केन्द्रीय सदस्यपदे नियुक्ताः वर्तन्ते। उपवेशेन सहमहामन्त्री पदे पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवः, कोषाध्यक्ष पदे डाक्टर मनोहर प्रधान, सहकोषाध्यक्ष पदे बसुमाया तामाङ, दलस्य प्रवक्तृ पदे जगदीश खरेलः, सहप्रवक्तृ पदे डाक्टर नमिता यादवः, सुरेन्द्र चौधरी च नियुक्ताः वर्तन्ते इति दलस्य महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यः असूचयत्। महामन्त्रिणः आचार्यस्य अनुसारेण दलस्य सचिवालय सदस्यपदे गणेश पराजुली, शिशिर खनालः, विराज भक्त श्रेष्ठः, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवः, डाक्टर मनोहर प्रधानः, कविन्द्र बुर्लाकुटी, जगदीश खरेलः, लिमा अधिकारी आचार्य, दीपक राज बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राणा मगरः, मनिष झाच मनोनिताः वर्तन्ते। एवमेव संगठन विभाग प्रमुख पदे प्रमोद नेउपाने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागस्य प्रमुख पदे शिशिर खनालः, सार्वजनिक सेवा जनवेदना व्यवस्थापन विभागस्य प्रमुख पदे विजय जैरू, जनस्वास्थ्य विभागस्य प्रमुख पदे डाक्टर तोषिमा कार्की, पूर्वाधार विभाग प्रमुख पदे निशा डागी, अर्थ विभागस्य प्रमुख पदे लिमा अधिकारी आचार्यस्य नियुक्ताः वर्तन्ते। उपवेशेन प्रत्यावर्तनाधिकार सम्बद्धं प्रारूपं निर्मातुं महामन्त्रिणः आचार्यस्य संयोजकत्वे एकादश सदस्यात्मिकां समितिं सङ्घटयितुं निर्णीतमस्ति। रासोपा दलस्य विधानस्य अनुसारेण सभापति एकः, केन्द्रीय सदस्येषु राष्ट्रिय महाधिवेशनात् निर्वाचितः 99, मनोनीतः 51, प्रदेश सभापतयः 7, पदेन केन्द्रीय सदस्याश्चेति आहत्य 58, सदस्यात्मिकायाः केन्द्रीय समितेः व्यवस्था वर्तते। राष्ट्रिय सभया प्रतिनिधि सभातः सन्देशं प्राप्तं। 42/2000 विक्रमवर्षस्य नेपाल विशिष्ट सेवा अधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थां पुनरुज्जीवयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकमाधृत्य विचारितामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या स्वीकृतोऽस्ति। राष्ट्रिय सभायाः स्थाने उपवेशे सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालः प्रस्तावमिमं निर्णयार्थं प्रस्तुतवान्। तत्पूर्वं प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सुविता गौतम इत्यनया विधेयकमाधृत्य विचारेतामिति निगद्य प्रस्तावयं प्रस्तुतः आसीत्। राष्ट्रियसभायाः स्थानोपवेशे सांसदः विष्णुकुमारी सापकोटा, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मिणी कोइराला, मोहम्मद खालिद, जगत तिमिलसिना सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। राष्ट्रियसभायाः स्थानोपवेशे सांसदानां प्रश्नान् उत्तरेण अर्थमन्त्री डाक्टर

जोजुलपा थौ नेपाल सम्ब चिन्छ सौ पी खुद गुण लाथो दशमी थो रेडियो नेपाल ख नेनादी जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा केन्द्रीय समिति दुजस गुमसित मनोनयन यागुदु मिग चोङगु केन्द्रीय समिति बैठक सुनिल लम्साल सुदन गुरुङ प्रतिभा रावल भूपदेव शाह पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव डाक्टर मनोहर प्रधान बसुमाया तामाङ सुरेन्द्र चौधरी डाक्टर भक्त बहादुर राई यता केन्द्रीय मनोनयन याकु ख बैठक पार्टी अतिथि पदाधिकारी विभागीय पिन्ता भाला नपान ललहागुदु सह महामन्त्री पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव दाँ भरिसा डाक्टर मनोहर प्रधान ल्यु दाँ भरिसा बसुमाया तामाङ प्रवक्ता सा जगदीश खरेल व सह प्रवक्ता सा डाक्टर नमिता यादव व सुरेन्द्र चौधरी यता मनोनयन यानागु महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य जानकारी व्यादिगु ख पार्टी सचिवालय दुजसा गणेश पराजुली शिशिर खनाल विराज भक्त श्रेष्ठ पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव डाक्टर मनोहर प्रधान कविन्द्र बुर्ला कोटी जगदीश खरेल लिमा अधिकारी आचार्य दीपकराज बोहरा समीक्षा बास्कोटा शिव नेपाली इन्दिरा राणा मगर व मनिष छायाता मनोनयन यानागु वेकलन जानकारी व्यादिल विभागीय भाला पाखे संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल सार्वजनिक सेवा व जनगुनासो व्यवस्थापन विभाग प्रमुख विजय जैरु जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख डाक्टर तोसीमा कार्की पूर्वाधार विभाग प्रमुख निशा डाँगी व अर्थ विभाग प्रमुख लिमा अधिकारी आचार्य यता ज्या भाला त ललहागुदु राइट टु रिकल नापाया दस्तावेज देखे त महामन्त्री आचार्य समेत जोकते झिन्छमा समिति निशोनेगु कोचिगुदु रासोपाया विधान कथा सभापति छमा राष्ट्रिय महाधिवेशन स निर्वाचित गुई गुमा मनोनित ङे छमा व पदेन केन्द्रीय दुजस प्रदेश सभापति नेमायना मुक्क सचिव ङे च्यामा दुजया केन्द्रीय समिति या व्यवस्था यागुदु। राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा स हसना नापा वोगु नेपाल विशेष सेवा एन 2042 साविक व्यवस्था माकेगु नापाया विधेयक 2083 दति विचायामा धैगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति अगुदु थ्यानिया बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले वास देकेता गाँजा उत्पादन व बजारीकरण अर्थ मन्त्रालय सहजीकरण देकेता जायाको धैया दिलासा मिगया बैठके संसदीय स्वपुतैगु संसदीयता जिम्मेवार व जवाफ दैदेके मागुली बब्यादिगुदु सभाया मिगया बैठके प्रादेशिक विशेषम धारणा पोङ्का दिशे नेपाली कङ्ग्रेसया सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना सार्वभौम सांसद अनहङ्गु न्यासया लिस सरकार बी मागु व भालासन लिचीले मुजु धया दिल अथियाना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीया सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा लगानीकर्ता भलसया लकस लेङ्का ते मफुगुली आसियर बजारे पुँजी पलायन जुईको हाठ्या खन्यादया चोङ्गु धया दिलसा नेकपा एमाले सांसद रुक्मिणी कोइराला संविधान जारी जुगु झिद जुई धुङ्कु साना संविधान कथन सोध दुने देके मागु कानुन देके मफुगु धका कुङ्खिना दिल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिद साउनल्या जक्क अथे नेदो मनु त वैदेशिक लजगाए नि विदेशे वङ्गु नेथना दिसे विदेश हुने मागु बाध्यता वैदेशिक जग्गा वने मालिगु लोकसया तन्हङ्के मागुले बब्यादिल अथियाना नेपाली कङ्ग्रेसया सांसद जगती मलसिना विश्वविद्यालय भिङ्के मागुली बब्यादिल वेक्ल स्वायत्त विश्वविद्यालय देकेता सरकारी अध्ययनको सल्लाह दिल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीया सांसद श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी देन्यङ्क खुसीबा चल या चलसँग विस्थापित मनुत्यको पुनस्थापना हो राहत व्यवस्था या यता सरकार नपाइना पेना दिल एमाले सांसद रेखा कुमारी झा प्रदेश सरकार नि सोङ्गु ता यी जुई धुङ्कु साना महत्व जागो अधिकार संघीय सरकार हे केन्द्रित जुया चोङकुली थुकिया त लल ह्यागो विचार लल ह्या मागो विचार पङ्का दिल साथ यानी बैठक शून्य इले सांसद पिसँग खुसी भा चलसँग विस्थापित पिन्ता थथे उदारो राहत या व्यवस्था याता सभा पाके सरकार या ध्यानको सल्लाह दिल राष्ट्रिय सभा मेगु बैठक थोए भदौ 9 गते सुथस्या झिता यी जुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु गोसादु प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा उच्च अदालत पोखरा व कास्की जिल्ला अदालत मिग सोयादिगु दुसा वेकला निगु अदालत निरीक्षण नापा सेवा प्रभाय अवस्था नापा थुइका दिगुदु प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा वङ्गु द
जेन्जी आन्दोलन या झोले मिन छुएका सेना चङ्गु अदालत भवन या त सोया दिगु सर्वोच्च अदालत या उपरजिस्ट्रार राजेन्द्र पौडेलन धया दिगु ख बर्खाया हुने देया थिथि थासे सडक दिगु नापाँ छु सडक खण्डे सवारी जोल्न चाने न्याके मदैगु जुगुदु प्रहरी प्रधान कार्यालय ठाउँ सुथे या त इले तक्कया धल कथङ काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक रसुवा रुकुम पश्चिम लमजुङ इलाम नुवाकोट रोल्पा पाल्पा मकवानपुरिया थिति सडक खण्डे लिचो लागु जानकारी बिगुख काभ्रे पलाञ्चोक या खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक के जुई फैगु हाठिया ध्याने तसे सनिल खुता इला निसे सुथसिया पेता यी तक्क मकवानपुरिया कान्ति लोकपथे बर्खाया हुने चाने या त इल निसे सुथे या त यी तक्क सवारी जोल ह्याके गुली पङ्ग थङ्गु दुस नुवाकोटिया टोखा छहरे सडक खण्डे मजिमगाको सेवा बाहेक मेघु सार्वजनिक व निजी सवारी जोल चानेसिया झिता इल निसे सुथेसिया या त यी तक्क डिका टगुडु इलाम नगरपालिका नौ राजदुवाली हिले जमेर मेची राजमार्ग न डिका टगु दुस उगु थासे वैकल्पिक ल दु धागु दु सिन्धुपाल्चोकिया भोटेकोसी गाउँपालिका दुई कोदारीखे दुगु अरानीको राजमार्ग इकु पहिरो वो वहे गाउँपालिका दुई या लिपिङे दुगु सडक दुनावे धुङ्कानी अनराजमार्ग दिनाचङ्गु दु रसुवाया उत्तरगया गाउँपालिका पाँच खाल्टे दुगु त्रिशुली मैलुङ स्याप्रुबेसी सडक खण्ड त्रिशुली खुसी चुसिका याङ्के धुङ्कानी अनन ल दिनाचङ्गु दु नापा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका दुई स्याउ पार्किङे बिहिबार हिने चलकुत वे धुङ्कानी पासाङ लामु सडक नपूर्ण कथन दिनाचङ्गु दु रुकुम पश्चिमे आठ बिस कोट नगरपालिका छ रिजे गार्ड खुसी भेरी करिडोर या जाँचरकोट डोल्पा सडक चलख टुसिका याङ्कानी अनन दिनाचङ्गु दु अथेयाना पाल्पा एथिनाउ गाउँपालिका तिन सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग या पाल्पा पाखे दुहामणि गुबिन्दुस अथे सच्ची मिटर उत्तर पाखे चलकुत होया सिद्धार्थ राजमार्ग न दिनाचङ्गु दु थो थासे थौ सुथे भुछिया नापा जुगु ख सडक दिगु थासे चल व खुसीबा जोखिम दयाहे चोङगुली स्वापु दुगु निकाए अवस्था सोय सवारी जोल व ले जुइता व मा कथ वैकल्पिक लम्पु छेलेता प्रहरी प्रधान कार्यालय इनापियागुदु सुदूरपश्चिम प्रदेश हुमा सोमा मन्त्री ओ निमा राज्य मन्त्री पद गोपनीयता शपथ कयादिगुदु मिग सनिल प्रदेश प्रमुख या कार्यालय गोसागोगु चगु च्याचोले मन्त्री प्रदेश प्रमुख नजिर मिया व राज्य मन्त्री मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नापा शपथ ग्रहण याना दिगु ख मुख्यमन्त्री भट्ट मिग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रकाश रावल या त उद्योग पर्यटन वन वातावरण ओम विक्रम भाट या त भौतिक पूर्वाधार विकास हो खुसीराम डगौरा थारू या त आन्तरिक मामिला हो कानुन मन्त्री व जानकी कुमार या त भौतिक पूर्वाधार व इन्दिरा गिरी या त वन राज्य मन्त्री नियुक्त याना दिगु ख बागमती प्रदेश या मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर कने विश्वास या मत कया दिगु ज्याजो दु वेक्लम प्रदेश सभा या बैठके विश्वास या मत काइगु ज्याजो दुगु प्रदेश सभा सचिवालय थागु ख थापा मगर या त प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा मुख्यमन्त्री संयुक्त याना दिगु ख बाजुराया निगु स्थानीय तह झिगु लासा आधारभूत अस्पताल सञ्चालने हगु दु जगन्नाथ गाउँपालिका केन्द्र जुड्डी एघार जगन्नाथ गाउँपालिका केन्द्र जुड्डी झिन छगु करोड ने च्यागु लाख ढेबा या हिसाब अस्पताल देके धुङ्कानी जनशक्ति उपकरण मोजुगु गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बहादुर साय जानकारी बिहादिगु ख अथे गौमूल गाउँपालिका झिगु लासा आधारभूत अस्पताल देके धुङ्कागु अथे दक्षिट्या लिपा सञ्चालने वगु गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबाद रोकाया जानकारी बिहादिगु ख प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालय तथा कार्यालय मातहत तिथि निकाय सालिपाङ्गु छवा दुने जुगु मु ज्याव उपलब्धि त सार्वजनिक आगुदु प्रधानमन्त्री कार्यालय समिक गोसागोको मिडिया ब्रिफिङे कार्यालय या प्रवक्ता नापा सहसचिव हेमराज अर्याल सरकार थुगुसी सफ्टवेयर विकास व सञ्चालन समिति निसोना आदेश 2083 स्वीकृति आगु जानकारी बिहादिगु खस विपन्न खस आर्या मसिका या लिधन्सा राष्ट्रिय आवास नीति 2068 समीक्षा नेपाया हिला चङ्गु सामाजिक आर्थिक लकसा विशेष नीतिगत लम्पु सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एकीकरण या नीति सुझात नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता उकिया छेलाबुला हो नेपालले
लिहाओपी अपरवासी तेगु पुन एकीकरण पुँजी ज्ञान वा सिपिया छेला बुला नापाया प्रतिवेदन तेता समीक्षा प्रक्रिया येङका गु प्रवक्ता अर्याल जानकारी व्यादिगु ख प्रवक्ता अर्याल कथा प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय व संघीय मन्त्रालय स मनु तेस तथ्य अनुभूति यैगु खुइ न्यागु ज्याचो न्याकेता फुक्क मन्त्रालय या त अवधारणा पव्य मस्यौदा नापा ल लागुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल हुगु शिक्षा एनहे गु ज्याजुया सङ्गुदयादिगुदु आ उकिया नीति स्वपुतै पिनिगु सल्लाह राय कागु ज्याजुया चोङगु व सुजयाता क घना सरकार निहजियागु ध्यादिल मिग धनगढी प्रदेश स्थानीय तह व शिक्षा विकास एकाइ तेगु नीति गोसागोगु प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण ज्याझो उलेज्या याना दिसे मन्त्री पोखरेल शिक्षा लगाया विकास या नीति सहकार्य समन्वय याना निहजिया मागुली बब्यादिल ये सोनी गया तो धंग हाथ्या या त सधाया नीति सुथ लाकेगु नीति लोपु विशेष उच्च स्तरीय अन्तर निकाय सल व्याकगुदु पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नुवाकोट क्षेत्र नम्बर एकसँग प्रतिनिधि सभा सदस्य नापा सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिनायना सुईसँग मिग जुगु सल्लाहले सोनिगया थिति पालिका प्रमुख वातावरण विभागका अधिकारी फोहोर व्यवस्थापन नापा स्वागु सफुदुगु निकाय प्रमुख फोहोर मैला व्यवस्थापन विज्ञ व बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन स लिचो लापी जलखलाया प्रतिनिधि तेगु बोटी सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा बन्चरे डाँडा प्रभावित लागाया जलाखलाया हाठ्या व फोहोर मैला व्यवस्थापन या त सरकार आफ्ना थाहा बिया तयागु ध्यादिल सूचना हक नापा एन 2064 रित पूर्वक माग यागु सूचना बिगु अधिकार सूचना अधिकार या त है लल हागुने थुच्यागु विशेष संसदीय समिति संसलय या मुआगुली संसदीय सम्भविगुदु संसदीय सुनवाई समिति संयुक्त या मिग चुङ्गु बैठकै सूचना माग यागु विशेष संसलय यागु प्रस्ताव तय धुङकानी संसद पिसा कानुन तोकियागु विशेष समिति सलय या मुआलिगु धासे माग जुगु सूचना बित सूचना अधिकार या त उज बित माग यागु ख बैठकै संसद वर्तमान पुनः कानुन नहे थागु विषयता संसदीय समिति निर्देशन बी मुआलिगु धयादिल महिला बाल बालिका लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादे भिरकुटी मण्डप यता व्यवस्थित सुरक्षित स्वच्छ हरित समावेशी सार्वजनिक केन्द्र कथा विकास ज्या मागुली अध्ययन न्यजा केता स्वपुदुगु निकाय त उज बियादिगुदु भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला या लिचो अनलाइन पाख्या वैगु प्रणाली विकास यागुदु अस्पताल या वेबसाइट या होना रिपोर्ट स्वेफैगु व्यवस्था यागुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एल निनो अवस्था कमजोर जुसा निसे ढिसी लागु कथा योजना चोङगुले नेपाली मनसुन या इले सामान्य शिवे मो वा वैगु सम्भावना कुबिगु धागुदु विभागका महानिर्देशक डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ कमजोर एल निनो या अवस्था मनसुन इले चेग प्रतिशत सोया उपथासे सामान्य शिवे मो वा वैगु प्रवृत्ति केना चोङगु थयादिगु ख आदेश पिनेया बुख अमेरिकी वायुसेवाया विमान अलास्का दुर्गम लागा झाँका जुया च्यामा मनुषिगुदु विमान अलास्का राज्य दक्षिण पश्चिम सिथे दुगु केप नेवेन ह्याम्या तहागु दुरिया राडर लागा विमानस्थले झाँका जुगु अलास्कन कमान्ड या विज्ञप्ति पाखे नेथङ्गु ख अलास्कन कमान्ड या प्रवक्ता झाँका अनुसन्धान याना चोङगु सीमा सियागु ना उमिगु छेजया त सुजित या धुङ्कागु झाँका अझ उप थल मुङ्केगु ज्याना चनागु धागुदु आ मौसम जानकारी थौदे हिमालय पहाडी लागया छुन थासे मलनापाल हाफसा तया मध्यम टकया वा वैगु चपुकुवा वैगु सम्भावना दु बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागया छुन थासे व मध्य प्रदेश या मो थासे व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागया मो थासे मलनापाल हाफसा तया पतिचा तस्कौँ वा वैगु सम्भावना कुबिगु धागुदु छ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लागया छगुनिगु थासे आफ्नो वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे गौसा ये सोनि गया क्वाज सुइगु फुटिङ यागु डिग्री सेल्सियस दति लुगु खसा थौनिने ये सोनि गया क्वाज निगुगु निसे सुइ छगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनि गले या ता इजुया सुइ छगु मिनेटे लुगु सूर्य शनि ल खुता इजुया पि छगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेनाति छ शुभ

चु रेडियो नेपाल हिना तामाङ सानगिर रिढाङ्नी दा ढेनमुला गैन्दिरा थिङ दिम थेमे छ्याम कोरबारी तिलमा पोखरा दोस्युबा काइब्लोन बालेन र साहा तिनी मुस्ताङ निस्युबा मुला कास्की जोङला सिडिओ कुमान सिंह गुरुङसे सुङबा अनुसार काइब्लोन साहा सडक घ्यालाम ताबान मुस्ताङ निस्युबा हिन्ला मुस्ताङरी काइब्लोनसे मुक्ति नाथला मोइबो लाच्युबा गेखोर मुला दिम्ब्लोन सुदन गुरुङसे झगान्या अपराध कार्य काबारी कोङबा ठिम सोबारी सरकार प्रतिबद्ध मुला विशेष सुङबा मुला सोमथिङला गरिमा चौधरी थोरी ताबा अपराधसे राङदा लानन दुङाल ताबा मुला सुङबान ब्लोन गुरुङसे घटनारी ठिम्से पिनबारी खाम्बा न्याय सुनिश्चित लाबारी सरकार प्रतिबद्ध मुला विशेष सामाजिक सञ्जालडी ब्रिस्युबा मुला च्याबा साइबा धुरी प्रहरी ग्याम लापरवाही ताबा विवाद ताम रेबा लिछा प्रहरी अधिकारी थोरिन च्याबा गोबाथेन कारबाही लबा गे तिसी झिन्बा मुला बिसी दिम्ब्लोन से फेसबुक ग्याम सुङबा मुला चुराङ लासिन उज्यालो नेपाल पार्टीला चोहो कुलमान घिसिङ से जेतपोर घटनाला दोषीदा कोङबा कारबाही लातोला बिसी सुङबा मुला गाछाला ब्लोन घिसिङ से तिनी कागिर गिक तेसी घटनाला च्याबा साइबा लासी दोषीदा ठिम अनुसार कारबाही लाबारी सुङबा हिन्ला दैलेखला ठाडी काँड गाउँपालिका घाला थापा टोल्डी दुई निबा लिछा नामसाला मिनी कादे लोङसी मुन थाबन खाबा मुला लाना नाम ताइसी खाबा ढुइसे थापा टोल्ला तिलाई दिम ग्रेन जोखिमरी ताबा लिछा नामसाला मिनी कादे लोङसी मुन थादोबा ताबा मुला नामसाला मिनी शेर बहादुर भण्डारीसे ढुइला जोखिमसे लामा मुनला मुनी दिम्री चिबारी आखाम्बा लिछा राङ ङेङ्गोरला दिम्री चिबान खाबा मुला बिसी सुङबा मुला चुराङ लासिन दुईसे लामा ठाडी काँड गाउँपालिका गाला कठायत टोल्डी थुङबा क्युई भन्दा ताबा मुला थुङबा क्युईला पाइभ दुईसे छेती शोभा लिछा नाम्साला मिनिदा समस्या ताबा हिन्ला चुराङ लासिन बाजुराला गौमूल गाउँपालिका सोम काँटी नाम्सारी दुईसे गोर्नी दिम्री छेती ताबा लिछा चुइब्ली दिम थेमेला ग्यार्जा गिक्से मेन्दो चुई घाम हिनिदा सुरक्षित घारी लेबा मुला दिम तोर ग्याम ताइबा ढुइसे गोर्नी दिम छेती ताबा लिछा चु दिम घामला गोर चुइनी दिम नोन ग्रेन जोखिम रे मुला युलुचोहो रामचन्द्र पौडेलसे बङ्गलादेश ला निचुई सोमछा युलु चोहोरी मिर्जा फकरुल इस्लाम आरिमगिर चुनावरी दामसुबासे आलम गिर्दा बधाई थिएन ज्याबा ढान्बा सुङबा मुला युलचोहो पौडेलसे छार डाम्बा युलचोहो आलम गिर्दा छार झिमेवारी ज्याबा तगाई सुङबान नेपाल थिएन बङ्गलादेश गुङ्री रेङ्बा दुई हेन्से मुबा ब्रेल्बा दारेमला रारी दातेला बिमा ज्याबा तगाई बिसी सुङबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा से मियो समिति सदस्यरी मेन्दो कुदा मनोनयन लाबा मुला पार्टीला तिलमा चिबा मियो समितिला चिसाङसे सुनिल लम्साल सुदन गुरुङ प्रतिभा रावल भूपदेव शाह पुरुषोत्तम सु प्रभात यादव डाक्टर मनोहर प्रधान बसुमाया तामाङ सुरेन्द्र चौधरी थिएन डाक्टर भक्त बहादुर राईदा मियो सदस्यरी मनोनयन लाबा हिन्ला चिसाङसे पार्टीला लोलो लोलो दानपो थेन विभागीय जिम्मेवारी नोन तोक लाबा मुला रोलोन छेन्डी पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव नोर चोहरी डाक्टर मनोहर प्रधान नोर चोहरी बसुमाया तामाङ सुङबोन्डी जगदीश खरेल ललितपुर थेन रो सुङबोन्डी डाक्टर नमिता यादव थेन सुरेन्द्र चौधरी दा मनोनयन लाबा मुला बिसी लोन्छेन विपिन कुमार आचार्यसे सुङबा मुला आचार्यसे सुङबा अनुसार पार्टी लोनखाङ सदस्यरी गणेश पराजुली शिशिर खनाल विराज भक्त श्रेष्ठ पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव डाक्टर मनोहर प्रधान कविन्द्र बुर्लाकोटी जगदीश खरेल ललितपुर लिमा अधिकारी आचार्य दीपक राज बोहरा समीक्षा बास्कोटा शिव नेपाली इन्दिरा राणा मगरथेन मनिष झादा मनोनयन लाभ मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपासे मियो सदस्य रासेङबा नीति घेन्दुन थेन गोबाङला निराला गेसाला याम्बुरी तिबा मुलाबिसी रासोपाला घेन्दुन विभाग घ्रेन्पो प्रमोद नेउपानेसे सुङबा मुला
ऊर्जा किन्यो थिएन सिंचाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से कोशी प्रदेशलाई विद्युत पिन्बा गेदा प्रभावकारी सोबारी विद्युत सोना लाबारी ध्यान पिन्दोला विशी सुङबा मुला कोशी प्रदेश कोर्बा धुरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणला प्रादेशिक थिएन वितरण गेजाङला ग्रेनपो कर्मचारी मिनिसे धाम्बा मुल्मी छ्याम सरोकार थान्बा निकायला मुल्मी कार्य थिएन तिनी काठुई लासिबान ब्लोन श्रेष्ठ से विद्युत आपूर्ति री म्राङबा समस्या मिनीला गुनासो थिएन कर्मचारीला समस्या गोसी योनान थुम्ना लाबारी सुङबा मुला चुराङ लासिनो ऊर्जा किन्यो थिएन सिंचाइ ब्लोन श्रेष्ठ तिलमा इन रुवाला भोक्राहा सब स्टेसन च्यासिबान सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर विद्युत पिन्बा गेदा सहज शोभा बिची सुङबा मुला सा व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोन प्रतिभा रावल से साला समस्या थुम्ना लाबारी सरकार से ग्रेन प्राथमिकता पिन्सी घे लाबान मुला बिसी सुङबा मुला ब्लोन रावल से मोकोन सा आरेबा दिम थेमेदा लालपुर्जा पिन्बा गेदा सरकार से अभियान सेङसी निबन मुला बिसी सुङबा मुला तिनी धनगढीरी सा समस्या समाधान समिति कैलालीला चिसाङरी ब्लोन रावल से ग्यार्जा डुरारी लाल पुर्जा पिन्सी जिन्बा सरकारला दोखाङ मुबासे साला घेदा प्राथमिकतारी थान्सी गे लाबारी सुङबा मुला सरकार से सार्वजनिक सेवा दा पारदर्शी थिएन मिनिसे माइबा राङबा सोबारी सार्वजनिक सेवा सुधार गे योजना 2083 जारी लाबा मुला काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङझाङला गेजाङसे ग्रेन लोन स्तरीय निर्णय लाबान जारी लाबा होजा गे योजना सेङबारी मोकोन ब्लोन खाङ गेजाङ ग्रेन ब्लोन थिएन ब्लोन सेङझाङदा चिठी पुइबा मुला गे योजना अनुसार सेवा पिनमा म्राङबा समस्या गोसी च्याङना लाकात्री योना प्रभाव ताबा सुधार लागे सेङबा व्यवस्था लाबा मुलाबिसी काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङझाङ गेजाङला सुङबोन थिएन रोलोन हेमराज अर्यालसे सुङबा मुला जनकपुर धामला गुई गामला सा नाङसी शोभा दिम टहरा कादे हटाई दिबारी गुठी घेन्दुन्से तिनी हेन्से डोजार प्रयोग लासी सा खाली लाबारी तिबा मुला गुठी गे योजना जनकपुर धामला ग्रेनपो किशोर कुमार झासे सुङबा अनुसार जनकपुर धाम लीला पेठिया बजार गामला गोर गुई गोरधोई ग्योई ग्याम तिनी सो हेन्से ठिम्दा नाङसी शोभा दिम टहरा कादे फुपारी ती बाहिनला गेन्दुन्से लानन रेम सूचना छिसी ठिम्दा नाङसी शोभा से कादे फुपारी पाङमानोन आङ्यानबा लिछा स्थानीय प्रशासन थिएन सुरक्षा निकायला रोरी डोजर सेङ बाहिनला गुलमिला रेसुङ्गा नगरपालिका निसकुडा पानीरी माकार्दा तात्पा धुरी पाप्सी मेन्दोगिक झामेकोला सिबा मुला तिलमाङ्यासे न्युरोनी रिग्याम खाबा माकार्दा तात्पा धुरी फ्लेप्सी पापमा घाँचुई घा दिङला कमला पाण्डे घाइते ताबा मुबा पाण्डे दा जोङ अस्पताल तमघाश्री बोर्सी मान लाबान लामा सिबा हिनला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला कपिल बस्तुरी ट्रक से ठोकमा मेन्दोगिक झामेकोला सिबा मुला तिलमा धिनिरी कपिल वस्तु नगरपालिका गिक आन्दोलन चोक ला हुलाकी सडक घ्यालाम्री ट्रक से मोटर साइकल डी क्रेबा मिनिदा ठक्कर पिनमा होजान घ्ला ला नगरपालिका नि बर्द बा चिबा निचुई नि दिङला निसा घद्दी सिबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला चुराङ लासिन चितवन जोङला खैरहनी नगरपालिका गिक तरकारी चोक ला स्यार नुप राजमार्गरी तिनी स्योरी बस तेन मोटरसाइकल ठोकमा मोटरसाइकल डी क्रेबा मेन्दो नि भिनी सिबा मुला तिनी दिनेरी नारायण घाट ग्याम बर्दीबास क्यार निबान लाबा बस थिएन बर्दीबास ग्याम नारायण घाट क्यार खाबन लाबा मोटरसाइकल ठोकपा मुबा बिसी प्रहरी से पाङबा मुला दुर्घटनारी मोटरसाइकल सेङबा सोमची नि दिङला जा कोला थिएन लिछाङ चिबा निचुई डु दिङला जामे कोला गम्भीर घाइते ताबा मुबा थेनिका देदा भरतपुरला चितौन मेडिकल कलेज री मन लाबन लामा सिबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान्स्युबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बङ्गलादेशक 23वाँ राष्ट्रपतिमे मिर्जा फखरुल इस्लाम आल मगिर निर्वाचित भेला पर हुनका प्रति हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रपति पौडेल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आल मगिर के नया जिम्मेवारीक लेल सफलताक शुभकामना व्यक्त करैत नेपाल बङ्गलादेश बीच लम्बा समयसँ कायम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के आओर सुदृढ़ बनेबाक नेपालक प्रतिबद्धता दोहरौलनि अछि। शुभकामना सन्देश में राष्ट्रपति पौडेल नेपाल आ बङ्गलादेश जनता के आपस में

0: जोड़बाक गंभीर जन स्तरीय संबंध सहित विद्यमान बहुआयामिक संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल ढाका स्थित नेपाली राजदूतावास जनौलक अछि। परिवारक सदस्य सहित निजी भ्रमण में कल पोखरा आयल प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह आई मुस्तांग दिस प्रस्थान कलन अछि। कास्किक प्रमुख जिला अधिकारी कुमार सिंह गुरुंग के अनुसार प्रधानमंत्री शाह स्थल मार्ग से मुस्तांग प्रस्थान कलन अछि। प्रधानमंत्री भ्रमण के पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं रहल ओ सेहो बतौल। मुस्तांग में प्रधानमंत्री मुक्तिनाथक दर्शन करबाक कार्यक्रम रहल जनाओल गेल अछि। गृहमंत्री सुदन गुरुंग जघन्य अपराध रोकबाक लेल मजबूत कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था करबाक हेतु सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। 3 वर्षीय गरिमा चौधरी ऊपर भेल जघन्य अपराध सँ स्वयं के अत्यंत दुखी बनाओल कहैत ओ घटना में कानून सँ दऽ सकय वाला अधिकतम न्याय सुनिश्चित करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल सामाजिक संजाल में लिखलन अछि। हमरा सभक लक्ष्य एकटा घटना में दोषी के सजा दिएबा में मात्र सीमित नहीं अछि। हमरा सभक बेटी सब डरा कर नहीं रहे, सुरक्षित भ कर बच सके, समाज निर्माण करब उद्देश्य मुख्य थिक कहित गृह मंत्री विगत के अनुभव आ कमजोरी से पाठ सीखित सरकार अनुसंधान प्रक्रिया आगू बढ़ा चुकल बतौलन अछि। आरोपी सबके तत्काल पकड़ल गेल आ अनुसंधान जारी रहल ओ बतौलन अछि। प्रारंभिक चरण में प्रहरी से लापरवाही भेल प्रश्न उठलाक बाद संबंधित प्रहरी अधिकारी पर सेहो छानबीन तथा कार्यवाहिक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल। गृह मंत्री सुदन गुरुंग फेसबुक मार्फत स्पष्ट कयलनि अछि। 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरीक हत्याक विरोध में स्थानीय आई सेहो बीरगंज पथलैया सड़क खंड अवरुद्ध कयलक अछि। गरिमाक न्याय दियबाक लेल मांग करैत स्थानीय वासी सब आई 4 दिन सेहो बीरगंज पथलैया सड़क के सिमराखंड में टेंट राखि के धरना दऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन राति स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दलक प्रतिनिधि तथा जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिकाक जनप्रतिनिधिक उपस्थिति में आंदोलनरत पक्ष सँ 5 मुद्दाक सहमति भेलाक बावजूदो गरिमाक परिवार एहि सहमति में अपन सहभागिता आ सहमति नहि रहल कहैत आंदोलन के निरंतरता दैत आयल अछि। बाराक जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 भक्ति नगर के बालिका चौधरी सन 31 गते बिहंसर सँ संपर्क विहीन भेल छली। खोजी के क्रम में बादक 2 गते अपन घर निकट एक घर में विवाह तथा मानवीय अवस्था में लाश भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय परसाक प्रहरी नायब उपेक्षक चक्र बहादुर मल जानकारी देलनि। बालिका चौधरी बलात्कारक बाद हत्या भेल घटना में संलग्न दोषी के कड़ा से कड़ा कार्यवाही कयल जेबाक मांग विभिन्न राजनीतिक दल आ विभिन्न संघ संस्था सेहो विरोध करैत आबि रहल अछि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ऑटिज्म भेल बाल बालिका सबके लेल 7 प्रदेश में आवासीय विद्यालय स्थापना कयल जेबाक बात बतौलन अछि। एहि के लेल सरकार बजट विनियोजन कयल ओ बतौलन। धनगढ़ी में आयोजित छलफल कार्यक्रम में मंत्री पोखरियाल ऑटिज्म भेल बाल बालिका सबक स्वास्थ्य शिक्षाक लेल सरकार गंभीर रहल बतौलन। मंत्री पोखरियाल नया शिक्षा आइन में ऑटिज्म संबंधी नीति समेटल गेल बतौलन। ऑटिज्म एकटा नया प्रकार के सामाजिक चेतना फैलावला आवश्यक रहल आ ई ऑटिज्म के समस्या समाधानक लेल सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय सबके हाथ में हाथ मिलाकर आगू बढ़बाक बात पर वो जोर दिलन। मंत्री पोखरियाल ऑटिज्म संबंधी मापदंड बन रहा अवस्था में सरोकार बाला से प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण रहा बतौलन। कार्यक्रम में सांसद सरिता महतो ऑटिज्म भेल बाल बालिका के वरदान रूप में लेबाक लेल अभिभावक सब से आग्रह कलन। राष्ट्रीय ऑटिज्म केयर सेंटर सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश बसनेत के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सरकारी तथा गैर सरकारी निकायक प्रतिनिधि तथा सरोकार बालाक सहभागिता रहल छल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल भूमि संबंधी समस्या समाधान सरकारक उच्च प्राथमिकता में रहला कारण ओही अनुसार स्थानीय तथा सहयोग कयल जेबाक बात बतौलन अछि। कैलालिक धनगढ़ी उप महानगर पालिका में आई आयोजित कार्यक्रम में ओ अव्यवस्थित वसुवासी भूमिहीन परिवार के लाल पुर्जा वितरण के लेल आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय के लेल सरकार संपूर्ण रूप में तैयार रहल बतौलन। मंत्री रावल विकासक अन्य गतिविधि जकाँ भूमि संबंधी समस्या समाधान के लेल सेहो उच्च प्राथमिकता में राखि कर काज करबाक लेल धनगढ़ी उप महानगरपालिका सँ आग्रह कयलनि। एहिसँ पहिने भूमि समस्या समाधान समिति कैलालिक बैठक में ओ 600 दिन भीतर लाल पुर्जा वितरण कऽ चुकबाक सन सरकार काज कऽ रहल जानकारी देत जिलाक सब पालिका में समस्या समाधानक लेल सहजीकरण करबाक लेल समिति सँ आग्रह कयलनि। मंत्री रावल भूमि समस्या समाधान कार्यक लेल आवश्यक स्रोत साधन जनशक्ति उपलब्ध करेबाक लेल सरकार तैयार रहल बतौलनि। समिति का अध्यक्ष एवं पूर्व जिलाधिकारी हीरा लाल रेग्मी कैलाली में जल्दी लाल पुर्जा वितरण करबाक तैयारी संबंध में छलफल भऽ रहल जानकारी देलनि। मंत्री रावल कैलाली आ कंचनपुर में विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी हेबाक कार्यकालगा सेहो रहल प्रमुख जिलाधिकारी रेग्मी बतौलनि। उद्योग मंत्री गौरी यादव परीक्षण उत्पादन भऽ रहल हेटौड़ा कपड़ा उद्योगक आय भिनसर अवलोकन कयलनि। उद्योगक अवस्था संबंध में जानकारी लेबाक लेल मंत्री यादव भिनसरे हेटौड़ा कपड़ा उद्योग पहुंचल छलथि। हुनका नेपाली सेनाक अधिकारी सब उद्योगक पिछला अवस्था संचालन के प्रगति तथा परीक्षण उत्पादन के विषय में जानकारी करौने छलथि। अवलोकन के क्रम में मंत्री यादव उद्योग संचालन के अवस्था उत्पादन क्षमता तथा अगला योजना संबंध में सेहो जानकारी लेने छलथि। सरकार अधिक समय से बंद रहल हेटौड़ा कपड़ा उद्योग के पुनः संचालन में अनबाक प्रयास स्वरूप परीक्षण उत्पादन आगू बढ़ौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM सर्वे स्वीकृत कलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय जनकपुर धाम में काल्हि सांझ बैसल प्रदेश सरकारक मंत्री परिषद बैठक आयोग कार्यक्षेत्र कार्यबोझ तथा संस्थागत आवश्यकताक आधार पर संगठन संरचना आ दरबानी पुनरावलोकन करबाक निर्णय कलक अछि। संगे आयोग करीब लगभग 55% दरबंदी कटौती करबाक निर्णय भेल। प्रदेश सरकारक प्रवक्ता एवं अर्थमंत्री युवराज भट्टराय जानकारी देलनि। दरबंदी कटौती सँ प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता कायम हेबाक संग उपलब्ध जनशक्तिक अधिकतम उपयोग हेबाक अपेक्षा कयल ओ बतौलनि। एहि तरह प्रदेश सरकारक विभिन्न मंत्रालय तथा निकाय में कार्यरत सचिव सभक खटन पटन तथा स्थापन करबाक निर्णय सेहो बैठक कयलक अछि। संबंधित मंत्रालय कार्यबोध विषयगत अनुभव कार्य क्षमता संस्थागत आवश्यकता आ प्रशासनिक निरंतरता के आधार बनाकर सचिव सबके खटन पटन तथा पदस्थापन कयल मंत्री भट्टराय बतौलनि। मंत्री परिषद बैठक प्रदेश सरकार अंतर्गत पूर्वाधार संबंधी मंत्रालय तथा निकाय में कार्यरत इंजीनियरिंग जनशक्तिक वृत्ति विकास तथा कार्यगत गतिशीलता संबंधी अध्ययन करबाक लेल 3 सदस्यीय कार्यदल गठन करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। नेपाल इंजीनियरिंग परिषद दर्ता भेल इंजीनियरिंग विज्ञक संयोजक में गठन होबय वाला कार्यदल प्राविधिक जनशक्तिक वृत्ति विकास विशेषज्ञता विकास पदस्थापन सरुआ तथा कार्यगत गतिशीलता का आधार आ आवश्यक कानूनी सुधारक विषय में अध्ययन कर 15 दिन भीतर मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में प्रतिवेदन पेश करबाक मंत्री भट्टराय जानकारी देलनि। जनकपुर धामक पोखर के जमीन अतिक्रमण का निर्माण कैल गेल संरचना हटेबाक लेल गुठी संस्थान आई से डोजर प्रयोग कर जमीन खाली करावा लागल अछि। गुठी संस्थान जनकपुर धामक प्रमुख किशोर कुमार झा के अनुसार जनकपुर धाम वार्ड नंबर 4 स्थित पेठिया बाजार निकट गोरधोई पोखर से आई भिनसर अतिक्रमित संरचना हटाब शुरू कैल गेल। संस्थान बेर बेर सूचना जारी कर संरचना स्वयं हटेबाक लेल आग्रह कलाक बावजूदो बलजप्ती ओहिठाम रहबाक आ एक नहि टेरबाक अवस्था रहला पर स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय के समन्वय में डोजर चलाओल गेल अछि। संस्थान जनपुर धामक 7 पोखर के अतिक्रमण संबंधी लगत संकलन कर अतिक्रमित जमीन खाली करेबाक लेल प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। एहि पोखर में कयल गेल अतिक्रमण के विवरण संकलन के क्रम में कतेको स्थान में भारी मात्रा में कतेको स्थान में समान अतिक्रमण भेल पाओल प्रमुख झा बतौलनि। हुनका अनुसार जनकपुर धाम में गुठी संस्थान अंतर्गत 49 पोखर अछि। पोखर मठ मंदिर तथा अन्य गुठी के अतिक्रमण हटेबाक लेल गुठी संस्थानक प्रशासक ध्रुव घिमरे के संयोजकत्व में गठित 9 सदस्यीय समिति काज कऽ रहल अछि। समिति संकलन कयल विवरण के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर संस्थानक केंद्रीय कार्यालय में बुझाओल गेल अछि। प्रमुख झा के अनुसार जनकपुर धाम में गुठी संस्थानक लगभग 22 से 25 बीघा अतिक्रमण पड़ल अनुमान अछि। रत्न सागर क्षेत्र में लगभग 9 बीघा मेला कुटी क्षेत्र में 4 बीघा से अधिक गुठी जमीन अतिक्रमण भेल जनाओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू। सातों प्रदेशों में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। भूमि समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का स्थानीय तहों से भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल का आग्रह। और म्यांमार के बौद्ध मठ पर हुए हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा द्वारा केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू हुई है। रासोपा कार्यशाला नीति संगठन और नेतृत्व श्रृंखला एक नामक इस कार्यशाला में पार्टी की नीति संगठन सुदृढ़ीकरण और नेतृत्व क्षमता विकास के विषय पर चर्चा हो रही है। ये जानकारी रासोपा के संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्योपाने ने दी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सातों प्रदेशों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने की बात कही है। आज कैलाली के धनगढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति गंभीर है और इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म संबंधी नीति को नए शिक्षा कानून में शामिल किया जाएगा। मंत्री पोखरियाल ने ऑटिज्म संबंधी तैयार किए जा रहे मानकों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव देने का आग्रह भी किया। गृहमंत्री सुधंग गुरुंग ने जघन्य अपराध रोकने के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत व्यवस्था करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 3 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध से खुद को बेहद दुखी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना में कानून के तहत मिलने वाला अधिकतम न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सरकार ने पिछले अनुभवों और कमियों से सीख लेते हुए घटना की जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा है कि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान सरकार के उच्च प्राथमिकता में है और स्थानीय तहों को भी इसी के अनुरूप सहयोग करना चाहिए। कैलाली के धनगढ़ी उप महानगर पालिका में आज आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अव्यवस्थित बसवासी और भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरण के लिए आवश्यक सहजीकरण और समन्वय करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इससे पहले भूमि समस्या समाधान समिति कैलाली की बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार 600 दिनों के भीतर लाल पुर्जा वितरण पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने जिले के सभी स्थानीय तहों में भूमि संबंधी समस्या समाधान के लिए सहजीकरण करने का समिति से आग्रह किया। मंत्री रावल ने कहा कि भूमि समस्या समाधान के लिए आवश्यक संसाधन और जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए सरकार तैयार है। एक अन्य प्रसंग में मंत्री रावल ने बताया कि सहकारी पीड़ितों की बचत राशि वापस करने का काम शुरू हो चुका है और अब तक 4,000 सहकारी बचतकर्ताओं की रकम वापस की जा चुकी है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि अब व्यक्तिगत स्वार्थ और एक दूसरे पर दोषारोपण से ऊपर उठकर पार्टी और देश के हित के बारे में सोचने का समय आ गया है। नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयंत्र द्वारा आज भक्तपुर के नगरकोट में आयोजित 2 दिवसीय जनसंगठन समन्वय संयंत्र कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करने वाले तत्वों को इन बातों को समझना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि सरकार को देश और जनता के हित में काम करना चाहिए और इसके लिए विपक्ष लगातार सरकार को खबरदार करता रहेगा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने कोशी प्रदेश के विद्युत आपूर्ति प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित विश्वसनीय तथा प्रभावी बताते हुए बिजली की खपत बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने

0: की बात कही है। कोशी प्रदेश के भ्रमण के दौरान आयोजित चर्चा में उन्होंने विद्युत आपूर्ति में देखी गई समस्याओं, स्थानीय लोगों की शिकायतों और कर्मचारियों की समस्याओं की पहचान कर तत्काल समाधान करने का निर्देश किया। मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह सुनसरी के भोकराह नरसिंह गांव पालिका 4 स्थित सुनसरी खोला तटबंध क्षेत्र का आज स्थलगत निरीक्षण करने के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में मंत्री श्रेष्ठ ने बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन और सिंचाई विकास के कार्यों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। चितवन के खैरहनी नगरपालिका एक स्थित तरकारी चौक के पास पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर आज बस और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। नारायणगढ़ से बर्दिवास की ओर जा रही बस और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल के बीच टक्कर होने पर मोटरसाइकिल चालक करीब 32 वर्षीय पुरुष और पीछे सवार करीब 26 वर्षीय महिला की मौत हुई है। चितवन पुलिस कार्यालय के अनुसार उपाधीक्षक चंद्रभूषण यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल दोनों के उपचार के दौरान मौत हुई है। मृतकों के नाम, उपनाम और पता अभी तक पता नहीं चल सका है। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की करीब 900 उन्नत किस्म के विकसित की हैं। परिषद के तकनीकी अधिकारी ऋषि राम अधिकारी ने बताया कि तराई से लेकर उच्च पहाड़ी क्षेत्रों तक विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल रोग प्रतिरोधी तथा अधिक उत्पादन देने वाली इन फसलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान पूरा कर खेती के लिए सिफारिश की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के मध्य सागाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर सैन्य हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले के समय मठ में करीब 100 लोग एक सप्ताह के ध्यान साधना कार्यक्रम में शामिल थे। ये कार्यक्रम बौद्ध लेंट के अवसर पर आयोजित किया जा रहा था। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। म्यांग टाउनशिप का स्लेव लेओ गाँव मंडेले से करीब 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद जारी संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित है। सेना और लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष के दौरान हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। म्यांमार की सेना की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी 2 दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू। 7 प्रदेशों में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। भूमि समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का स्थानीय तहों से भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल का आग्रह है। और म्यांमार के बौद्ध मठ पर हुए हवाई हमले में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।